0: को भी जरूरत नहीं है।
1: मिसाली के मत गमन की ओबे मुलु पावलम दुकट पत्तन बाव से तन्ना अविधि मत्व असहीयन रियदावने किरीमें वाले किंदा
2: टेक्या सुरक्षित मगतोटे

ईशान दियो दिशा में उतुम पिरित सज्जायने कुट वताले पाणुतुर गंगुल सिरि परम विशुद्धारामाधिपतिव वैडसेट अपवत्वी वताल प्रवचन कीर्ति श्री सरबंज मिशारद पूज्यपाद मिगस्वे सोमरत्न स्वामी महासे विसिनी।